0: आखिर आ ही गया जिसका हम सभी को था इंतजार, उसका नाम है फ्राइडे। हेलो माय सेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और वो दिन जिसका मंडे से ही इंतजार होता है। आज अलार्म की आवाज भी थोड़ी कम बुरी लगती है क्योंकि दिल कहता है बस आज का दिन, फिर वीकेंड अपना ही है जनाब। लेकिन एक बात याद रखिए, फ्राइडे सिर्फ वीकेंड का गेट पास नहीं होता है बल्कि पूरे हफ्ते की मेहनत का सेलिब्रेशन होता है। अगर इस हफ्ते कुछ अचीव किया है खुद को शाबाशी दीजिए, और अगर सब प्लान के हिसाब से हो नहीं हुआ, हर फ्राइडे एक रिमाइंडर है कि नेक्स्ट वीक एक नई शुरुआत लेकर आने ही वाला है। तो आज ऑफिस हो या कॉलेज, घर हो या सफर, फेस पर एक स्माइल रखिए, स्ट्रेस को थोड़ा साइड रखिए और अपने फेवरेट गाने के साथ फ्राइडे को फील कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान। और भी बहुत सारी बातें होगी अपने आज के शो में क्योंकि आज है फ्राइडे। और अभी तो शो का आगाज हुआ है, उठिए उठिए और इस दिन का आगाज कीजिए। लौट कर आऊंगा बहुत सारी बातें करने, फिलहाल एंजॉय करते आने वाला सुपर हिट गाना हैप्पी फ्राइडे एंड स्टे ट्यून्ड ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: ये सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आरजी अदनान आपके साथ है आपकी मॉर्निंग गुड करने के लिए इन द शो
1: ऑल इज वेल आरजी अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और इस वक्त ना तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया मौका देता हूँ गिफ्ट जीतने का। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरे एक सवालों के कुछ जवाब देना पड़ते हैं। सो ये सवाल कुछ बहुत मुश्किल नहीं होते, आसान से नन्हे से मुन्ने से सवाल, मतलब एक पहेली है मैं जो आपको पूछूंगा और आप मुझे जवाब बताओगे। तो आज की पहेली ऐसी है कि बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे बांटने पर वो बढ़ती है। फिर से दोहराता हूँ कि बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे बांटने पर वो बस बढ़ती है। इसका जवाब हमें व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, 9359320080 पर जवाब व्हाट्सएप करें और बताइएगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे बांटने पर वो बस बढ़ती रहती है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। सो जल्दी करें, देर मत करें और बाकी तो सुनते रहे।
1: All is well, RJ and Anand ka morning show, freshness live radio ka flow,
0: on MGM 90.8 FM.

0: லைஃப் மந்த்ரா வித் ஆர்ஜே அதனான் இன் த ஷோ. जिंदगी में कितने ही उतार चढ़ाव आते हैं, कभी काम का प्रेशर, कभी पैसों की टेंशन, कभी रिश्तों की दिक्कतें, ऐसे वक्त हम अक्सर सोचते हैं कि यार खुश रहने की वजह ही नहीं मिलती यार। लेकिन सच बताओ, खुशी की वजह खोजनी नहीं पड़ती, मुस्कुराना ही वजह बन जाती है। मुस्कान में एक अजीब सी ताकत होती है यार। आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी से मुस्कुरा कर मिलते हैं तो सामने वाला भी बिना चाहे मुस्कुरा देता है। यही है पॉजिटिव एनर्जी की चैन। मुस्कान से न सिर्फ आपका मूड अच्छा होता है बल्कि आसपास का माहौल भी हल्का हो जाता है। सोचिए, बारिश के दिन ट्रैफिक में फंसे हैं, सामने वाला ड्राइवर चिल्ला रहा है लेकिन आप उसको मुस्कुराकर बस हाथ जोड़ लेते हैं, गुस्सा अपने आप गायब हो जाता है। ऑफिस में बॉस का मूड खराब है लेकिन आपने मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग बोल दिया तो माहौल बदल ही जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे दिमाग से हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, यानी एक ऐसे नेचुरल मेडिसिन जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो याद रखिए, जिंदगी चाहे कितनी भी उलझने भरी क्यों ना हो, उलझने मुस्कान से हल्की हो ही जाती है। तो यही तो था आज का लाइफ मंत्रा, कीप स्माइलिंग, क्योंकि आपकी मुस्कान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये लाइफ मंत्रा को याद रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

फरमाइशें मैं पूरी करता हूँ, बस आप बताते रहिएगा। आरजे अदनान आपके साथ है आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए। So, आज गाने की फरमाइश आई है शुभांगी सूर्यवंशी की तरफ से इस गाने के लिए। वाह क्या नाम है यार, शुभांगी सूर्यवंशी। तो चलिए फिर मैडम की फरमाइश है इस गाने की।

ये कहाँ आ गए हम, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाना है। सिलसिला इस फिल्म से है जिसके अंदर अमिताभ बच्चन और रेखा जी ने एक्ट किया था। सो शुभांगी जी के फरमाइश पर ये कहाँ आ गए हम, ये गाना अभी हम प्ले करते हैं। बाय द वे दोस्तों, अगर आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो हमें बिंदास व्हाट्सएप कीजिएगा 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। शर्माइए मत, फरमाइश पूरी कीजिए और सुनते रहिए।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

नवीन मतदान यादी तुमचं नाव आहे का नाही हे कसं चेक करायचं माहितीये? मी सांगतोय ना, बात कुछ ऐसी है कि SIR फॉर्म तो सभी ने फिलअप किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया तो भाई घबराओ मत, आपका रह गया होगा। तो 24 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, और इसके डिटेल भी इन्फॉर्मेशन आप आपके नगर सेवक से ले सकते हो। बैक टू टॉपिक, तो अगर जिन्होंने ये फॉर्म फिलअप किया है और जो अभी पहली मतदान यादी आई है ना, तो उसमें आपका नाम है या नहीं ये आपको चेक करना है, तो कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके मोबाइल पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट मैसेज में जाना है, यानी कि SMS ओपन कीजिए, वहाँ पर 1950 इस नंबर पर एक मैसेज सेंड करना है। वो मैसेज होगा आपका जो वोटर ID नंबर है वो उसमें ऐड करना है, और वही मैसेज आपको सेंड करना है। उसके बाद सामने से रिप्लाई आएगा जिसमें नया रोल नंबर क्या है आपका और सीरियल नंबर क्या है ये आपको बताया जाएगा। अगर रिप्लाई आ गया, आपका रोल नंबर और सीरियल नंबर आ गया, तो समझ जाइएगा कि आपका नाम नए वोटर लिस्ट में आ चुका है। अगर आपका नाम नहीं आया है तो कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन गलत होगी, या आपका एड्रेस कुछ गलत हो गया होगा, या मोबाइल नंबर में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो ये सब आप करेक्ट करके ले सकते हो 24 अक्टूबर के पहले पहले। सो याद रखिएगा, और प्रोसेस बहुत सिंपल है चेक करने के लिए, बस 1950 इस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज करना है आपका EPIC नंबर, यानी कि मतदान ओळख पत्र क्रमांक। सो लक्षात ठेवा आणि चेक करा की तुमचं नाव आहे लिस्ट मध्ये की नाही, आणि ऐकत रहा Only on MGM 90.8.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

खुशखबर खुशखबर खुशखबर, जी हाँ, हम सभी के लिए एक बेहतरीन वाली खुशखबर लेकर आया हूँ। अपनी सिटी ने ना तो एक बार फिर से नाम रोशन किया है, और इस बार रीजन है हमारी हवा। जी हाँ, इस शहर की हवा, फिजा। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में छत्रपति संभाजीनगर ने देश के 130 शहरों में से 16वीं रैंकिंग हासिल की है। जी हाँ, 130 में से 16वीं रैंकिंग पर अपना शहर आ चुका है। अब देखो कंपेरिजन क्या है, मुंबई 28 नंबर पर है, दिल्ली 29 नंबर पर है, और अपना शहर 16वें नंबर पर है। मतलब अपने शहर की हवा फिजा एकदम क्वालिटी वाली है भाई। तो इस रैंकिंग के पीछे सिटी में किए गए कुछ इंपॉर्टेंट काम भी है, जैसे कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना, गार्बेज मैनेजमेंट, कचरा जलाने पर कंट्रोल, मैकेनिकल क्लीनिंग और ट्रैफिक से होने वाले एयर पोल्यूशन को कम करना। सो ये बहुत बेहतरीन वाला इनिशिएटिव अपने प्रशासन ने लिया था, और एक साल के अंदर उन्होंने करके दिखाया कि हमारे शहर की हवा कितनी साफ है और कितनी पॉजिटिव वाली है। ये जो पूरे काम है ना, तो इसको गवर्नमेंट की तरफ से 200 मार्क्स में डिवाइड किया जाता है, और इसमें से अपने शहर को कितने मार्क्स मिले पता है, वो बताऊंगा मैं आपको लेकिन कुछ ही देर के बाद। तब तक के लिए कांग्रेचुलेशन हम सभी को, और बातें तो इस पर होगी लेकिन कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान, ओनली ऑन MGM 90.8।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: नहीं।

So, बात कुछ ऐसी है कि अपने शहर की हवा लाजवाब है, काबिले तारीफ है, और इस वजह से अपने शहर का नंबर आ चुका है। तर 10 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशातील 48 प्रमुख शहरांच्या यादीत 16व्या नंबरवर छत्रपती संभाजीनगरचं नाव आलेलं आहे स्वच्छ हवामध्ये। आणि यामध्ये 200 गुण होते, ज्यासाठी हे पूर्ण वर्षभर सर्वे सुरू होता, यांचा वेगवेगळे काम सुद्धा करण्यात आले होते, आणि हे सर्व बघूनच 200 पैकी 178 मार्क्स आपल्या शहराला मिळाले। इस वजह से 16वे नंबर पर अपना शहर आ चुका है। दिल्ली और मुंबई को भी शहर ने पीछे डाल दिया, और इतनी साफ हवा अपने शहर की है, बात तो सही है यार। अभी ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है दोस्तों, क्लीन एयर का मतलब है बेटर हेल्थ, बेटर लाइफस्टाइल और अपने फ्यूचर के लिए बेटर सिटी। और अब इसको हमें बरकरार रखना है, और अपने शहर की हवा को हमें ऐसे ही साफ सुथरा रखना है, तर आपल्याला काही काम करावे लागेल। ते म्हणजे जे काम आपण आता वर्षभरापासून करत आहोत तेच काम, एयर पोल्युशन कंट्रोल करना है, गार्बेज मैनेजमेंट करना है, कचरा जलाने पर कंट्रोल करना है, और सफाई का ख्याल रखना है। तर हे काही महत्त्वाचे पॉइंट्स आपण फॉलो केले ना, तर आपली जी रँकिंग आहे पुढच्या वर्षी नक्कीच टॉप 10 मध्ये येऊ शकते। सो छत्रपती संभाजीनगर वासियो, 16वी रँकिंग के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। लेकिन अब टारगेट सिर्फ खुश होने का नहीं है, अगले सर्वे में और बेटर करने का भी है, क्योंकि अपना शहर अब तक इतिहास के लिए फेमस है, अब साफ हवा और बेटर लाइफस्टाइल के लिए भी हमें इसे फेमस करना है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड स्टे ट्यून्ड। Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सच में काबिले तारीफ काम करती है। हनुमान अंश इस फिल्म के ना तो हर तरफ चर्चाएं शुरू है और ये जब फिल्म रिलीज हुई थी तो पहले वीक ना तो बहुत स्लो चल रही थी, चाहिए उतना इसको ऑडियंस नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इसकी पब्लिसिटी हो गई सोशल मीडिया के जरिए, फिर लोगों ने इसके पॉजिटिव रिव्यू दिए और लोगों को इतनी पसंद आई कि अब इंडिया में फिलहाल 2026 के टॉप 10 फिल्मों के अंदर तगड़ी कमाई की है, उसमें तीसरे नंबर पर ये फिल्म आ चुकी है। जी हाँ, मतलब हनुमान अंश फिलहाल टॉप 3 में है। पूरे इंडिया में अब तक इसने 222 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो इसी के साथ फर्स्ट नंबर पर है धुरंधर 2, सेकंड नंबर पर है बॉर्डर 2 और थर्ड नंबर पर आ चुकी है हनुमान अंश। क्या बात है यार, मानना तो पड़ेगा अगर कहानी बहुत प्यारी रही ना तो ऑडियंस हर एक फिल्म को उतना ही प्यार देती है। हालांकि ये फिल्म बस 2 करोड़ के बजट में बनी है लेकिन कमाई इसने 222 करोड़ तक की है इंडिया में। कौन कहता है कि फिल्म में बस एक्शन सीन VFX इससे बनती है, भाई एकदम कहानी बेहतरीन रहे ना तो फिल्म चलती ही है। तो अगर आपने हनुमान अंश देखी है तो कैसी लगी आपको ये फिल्म बताइए जरा, DM कीजिएगा इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर। बाकी सुनते रहिए
1: ओनली ऑन MGM 90.8

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

0: लेट्स टॉक अबाउट 90s वाला दौर जिसको हम कभी भूल ही नहीं पाते। तो बात कुछ ऐसी है कि देखो 90s का जो सफर होता है ना, वो हर किसी को अपना सा लगता है। उसकी यादें हो, वो बचपन हो, वो मासूमियत हो, और 90s में जो कुछ हमने धिंगाना मस्ती की थी और जिस तरीके से हमने अपनी दोस्तों के साथ वक्त बिताया था, मोहब्बत की थी, लेटर लिखे थे, मतलब कलम से लेकर फोन तक का सफर 90s वाले बच्चों ने देखा है, और जो कि आज बड़े हो चुके हैं, जो मिलीनियर्स इस रूप में जिन्हें जाना जाता है। बट दिल से ना तो वो 90s की यादें तो कभी नहीं निकलती ना, चाहे फिर गाने हो, फिल्म्स हो, कोई एक्टर हो, कोई टीवी सीरियल हो, कोई मैगजीन हो, या बस सुकून के वो लम्हे हो। तो उन्हीं बातों को हम ताज़ा करते हैं अपने एक स्पेशल शो में, जो कि संडे को होता है सुबह ठीक 9 से 11, जिसका नाम है
1: 90s की बातें। याद आती हैं वो बातें।
0: जी हाँ, मैं ही लेकर आता हूँ वो शो। तो वो शो सुनना ना बोले। कब सुनोगे आप? हर संडे सुबह 9 से 11 बजे तक मॉर्निंग के टाइम पर। और हाँ, इसी के साथ 90s की आपकी भी क्या कुछ यादें थी, कुछ मोमेंट्स होंगे जो आपको हमेशा याद रहते हैं, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर। बाकी संडे सुबह ठीक 9 बजे 90s वाले दौर में आइएगा जरूर। मैं तो रहूंगा ही, बाकी मुस्कान की चमकान के साथ सुनते रहिए।
2: Only on MGM 90.5.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार आरजे अदनान आपके साथ है। आज आपकी मॉर्निंग गुड करने के मतलब रोजी होता हो यार।
1: All is well, आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो,
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। वैसे हम मॉर्निंग में ना तो एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है
2: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी।
0: और इसमें ना तो मैं आपको एक पहेली पूछता हूँ। आज मैंने आपको पहेली पूछी थी कि बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे बांटने पर वो बस बढ़ती रहती है, और इसका जवाब है ज्ञान, नॉलेज। जी हाँ, नॉलेज, ज्ञान। हम जितना बांटेंगे ना तो उतना ही बढ़ते रहता है, और इसी पहेली का एकदम सही जवाब दिया है आशीष देशमुख ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आशीष देशमुख, आज आप विनर बन चुके हो। आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। सो आशीष जी ने तो जवाब एकदम सही दिया और सबसे पहले दिया। तो आप भी अपने पास का जितना भी ज्ञान है ना बस बांटते रहिएगा और अपने आप बढ़ते ही रहेगा। और भी ऐसे पहेलियां मैं हर दिन आपको पूछूंगा अपने इस शो में जिसका नाम है
1: All

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एंड फाइव, छत्रपति संभाजीनगर।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM।
2: साथ है तो बात है।

0: जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा संचालित कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित
1: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

0: मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। साथियों, ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले टाइड ग्रांट जल एवं स्वच्छता के कार्यों के लिए निर्धारित है। इस राशि का उपयोग गांव की पेयजल योजनाओं की देखभाल, मरम्मती, जल गुणवत्ता जांच, जल संरक्षण और लोक जल उत्सव, जन जागरूकता कार्यक्रम जैसे गतिविधियों में किया जा सकता है। इससे पेयजल योजनाएं लंबे समय तक सुचारू रूप से चलती रहेंगी और ग्राम पंचायत के सहयोग से लोगों को बेहतर पेयजल सेवा मिलती रहेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाइप जल आपूर्ति योजना से मिलने वाला साफ और सुरक्षित पीने का पानी केवल सुविधा नहीं है, बल्कि यह बेहतर स्वास्थ्य की बुनियाद है। इससे डायरिया, पीलिया और अन्य जल जनित बीमारियों में कमी आती है, बच्चों और गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य सुधरता है और परिवारों का इलाज पर होने वाला खर्च भी घटता है। स्वस्थ परिवार मतलब कामकाज में कमी नहीं, आमदनी में नुकसान नहीं। इसलिए पाइप नल योजना के माध्यम से मिलने वाला साफ पानी गांव की तरक्की की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, चूंकि मानसून अपने चरम पर है और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि वर्षा जल का एक एक बूंद हमें बचाना चाहिए, मेरा सबसे आग्रह है कि पानी का समझदारी से उपयोग करें और बर्बादी से बचें। साथ ही जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के रिचार्ज की तैयारी करें ताकि हमारे पेयजल स्रोत साल भर टिकाऊ बने रहें। आइए हम सब मिलकर सरकार और समुदाय की साझा जिम्मेदारी निभाएं, अपनी पाइप पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखें, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि हर घर तक सुरक्षित और नियमित पानी पहुंचता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
1: अरे सुजल, पुढच्या भागाबद्दलही थोडंसं सांग ना।
2: अरे हो, मी तर विसरलोच होतो। मित्रांनो, पुढच्या भागात आपण जाणून घेणार आहोत की स्वच्छ भारत मिशन देशातल्या प्रत्येक गावाला स्वच्छ आणि ODF प्लस गाव बनवण्यासाठी काय प्रयत्न करत आहे आणि त्यासाठी पुढची रणनीती काय असणार आहे। तर मित्रांनो, आमच्यासोबत असंच जोडत राहा स्वच्छ सुजल गाव की कहाणी रेडिओ की जुबानी।
1: पुढच्या भागापर्यंत आता सगळ्यांना आमचा नमस्कार।
2: आणि आजचा कार्यक्रम कसा वाटला नक्की आम्हाला कळवा 9359320080 या व्हॉट्सअप नंबरवर।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM साथ है तो बात है।

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जल ले दो,
1: फुल्ली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हजार

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

की कोचो कैसा बांगाली है तू, इतना फिश खाता है फिर भी अकुल नहीं है।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

और बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

0: नवीन मतदान यादी तुमचं नाव आहे का नाही हे कसं चेक करायचं माहितीये? मी सांगतोय ना. तो बात कुछ ऐसी है कि SIR फॉर्म तो सभी ने फिलअप किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया तो भाई घबराओ मत, आपका रह गया होगा. तो 24 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, और इसके डिटेल भी इन्फॉर्मेशन आप आपके नगर सेवक से ले सकते हो. बैक टू टॉपिक, तो अगर जिन्होंने ये फॉर्म फिलअप किया है और जो अभी पहली मतदान यादी आई है ना, तो उसमें आपका नाम है या नहीं ये आपको चेक करना है. तो कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके मोबाइल पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी. सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट मैसेज में जाना है, यानी कि SMS ओपन कीजिए. वहाँ पर 1950 इस नंबर पर एक मैसेज सेंड करना है. वो मैसेज होगा आपका जो वोटर ID नंबर है वो उसमें ऐड करना है, और वही मैसेज आपको सेंड करना है. उसके बाद सामने से रिप्लाई आएगा जिसमें नया रोल नंबर क्या है आपका और सीरियल नंबर क्या है ये आपको बताया जाएगा. अगर रिप्लाई आ गया, आपका रोल नंबर और सीरियल नंबर आ गया, तो समझ जाइएगा कि आपका नाम नए वोटर लिस्ट में आ चुका है. अगर आपका नाम नहीं आया है तो कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन गलत होगी, या आपका एड्रेस कुछ गलत हो गया होगा, या मोबाइल नंबर में कुछ प्रॉब्लम होगा. तो ये सब आप करेक्ट करके ले सकते हो 24 अक्टूबर के पहले पहले. सो याद रखिएगा, और प्रोसेस बहुत सिंपल है चेक करने के लिए. बस 1950 इस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज करना है आपका EPIC नंबर, यानी कि मतदान ओळख पत्र क्रमांक. सो लक्षात ठेवा आणि चेक करा की तुमचं नाव आहे लिस्ट मध्ये की नाही, आणि ऐकत रहा.
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

खुशखबर खुशखबर खुशखबर, जी हाँ, हम सभी के लिए एक बेहतरीन वाली खुशखबर लेकर आया हूँ। अपनी सिटी ने ना तो एक बार फिर से नाम रोशन किया है, और इस बार रीजन है हमारी हवा। जी हाँ, इस शहर की हवा, फिजा। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में छत्रपति संभाजीनगर ने देश के 130 शहरों में से 16वीं रैंकिंग हासिल की है। जी हाँ, 130 में से 16वीं रैंकिंग पर अपना शहर आ चुका है। अब देखो कंपेरिजन क्या है, मुंबई 28 नंबर पर है, दिल्ली 29 नंबर पर है, और अपना शहर 16वें नंबर पर है। मतलब अपने शहर की हवा फिजा एकदम क्वालिटी वाली है भाई। तो इस रैंकिंग के पीछे सिटी में किए गए कुछ इंपॉर्टेंट काम भी है, जैसे कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना, गार्बेज मैनेजमेंट, कचरा जलाने पर कंट्रोल, मैकेनिकल क्लीनिंग और ट्रैफिक से होने वाले एयर पोल्यूशन को कम करना। सो ये बहुत बेहतरीन वाला इनिशिएटिव अपने प्रशासन ने लिया था, और एक साल के अंदर उन्होंने करके दिखाया कि हमारे शहर की हवा कितनी साफ है और कितनी पॉजिटिव वाली है। ये जो पूरे काम है ना, तो इसको गवर्नमेंट की तरफ से 200 मार्क्स में डिवाइड किया जाता है, और इसमें से अपने शहर को कितने मार्क्स मिले पता है, वो बताऊंगा मैं आपको लेकिन कुछ ही देर के बाद। तब तक के लिए कांग्रेचुलेशन।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: सो बात कुछ ऐसी है कि अपने शहर की हवा लाजवाब है, काबिले तारीफ है, और इस वजह से अपने शहर का नंबर आ चुका है। तर 10 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशातील 48 प्रमुख शहरांच्या यादीत 16व्या नंबरवर छत्रपती संभाजीनगरचं नाव आलेलं आहे स्वच्छ हवामध्ये। आणि यामध्ये 200 गुण होते ज्यासाठी हे पूर्ण वर्षभर सर्वे सुरू होता, यांचा वेगवेगळे काम सुद्धा करण्यात आले होते, आणि हे सर्व बघूनच 200 पैकी 178 मार्क्स आपल्या शहराला मिळाले। इस वजह से 16व्या नंबर पर अपने शहर आ चुका है। दिल्ली और मुंबई को भी शहर ने पीछे डाल दिया और इतनी साफ हवा अपने शहर की है, बात तो सही है यार। अभी ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है दोस्तों, क्लीन एयर का मतलब है बेटर हेल्थ, बेटर लाइफस्टाइल और अपने फ्यूचर के लिए बेटर सिटी। और अब इसको हमें बरकरार रखना है और अपने शहर की हवा को हमें ऐसे ही साफ सुथरा रखना है, तो आपल्याला काही काम करावं लागेल। ते म्हणजे जे काम आपण आता वर्षभरापासून करत आहोत तेच काम, एयर पोल्युशन कंट्रोल करना है, गार्बेज मैनेजमेंट करना है, कचरा जलाने पर कंट्रोल करना है और सफाई का ख्याल रखना है। तर हे काही महत्त्वाचे पॉइंट्स आपण फॉलो केले ना तर आपली जी रैंकिंग आहे पुढच्या वर्षी नक्कीच टॉप 10 मध्ये येऊ शकते। सो छत्रपती संभाजीनगर वासियो, 16वी रैंकिंग के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। लेकिन अब टारगेट सिर्फ खुश होने का नहीं है, अगले सर्वे में और बेटर करने का भी है, क्योंकि अपना शहर अब तक इतिहास के लिए फेमस है, अब साफ हवा और बेटर लाइफस्टाइल के लिए भी हमें इसे फेमस करना है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: लेट्स टॉक अबाउट 90s वाला दौर जिसको हम कभी भूल ही नहीं पाते। तो बात कुछ ऐसी है कि देखो 90s का जो सफर होता है ना, वो हर किसी को अपना सा लगता है। उसकी यादें हो, वो बचपन हो, वो मासूमियत हो, और 90s में जो कुछ हमने धिंगाना मस्ती की थी और जिस तरीके से हमने अपनी दोस्तों के साथ वक्त बिताया था, मोहब्बत की थी, लेटर लिखे थे, मतलब कलम से लेकर फोन तक का सफर 90s वाले बच्चों ने देखा है, और जो कि आज बड़े हो चुके, जो मिलीनियर्स इस रूप में जिन्हें जाना जाता है। बट दिल से ना तो वो 90s की यादें तो कभी नहीं निकलती ना, चाहे फिर गाने हो, फिल्म्स हो, कोई एक्टर हो, कोई टीवी सीरियल हो, कोई मैगजीन हो, या बस सुकून के वो लम्हे हो। तो उन्हीं बातों को हम ताज़ा करते हैं अपने एक स्पेशल शो में, जो कि संडे को होता है सुबह ठीक 9 से 11, जिसका नाम है
1: 90s की बातें याद आती हैं।
0: जी हाँ, मैं ही लेकर आता हूँ वो शो। तो वो शो सुनना ना बोले। कब सुनोगे आप? हर संडे सुबह 9 से 11 बजे तक मॉर्निंग के टाइम पर। और हाँ, इसी के साथ 90s की आपकी भी क्या कुछ यादें थी, कुछ मोमेंट्स होंगे जो आपको हमेशा याद रहते हैं, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर। बाकी संडे सुबह ठीक 9 बजे 90s वाले दौर में आइएगा जरूर। मैं तो रहूंगा ही, बाकी मुस्कान की चमकान के साथ सुनते रहिए।
2: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सच में काबिले तारीफ काम करती है। हनुमान अंश इस फिल्म की ना तो हर तरफ चर्चाएं शुरू है, और ये जब फिल्म रिलीज हुई थी तो पहले वीक ना तो बहुत स्लो चल रही थी, चाहिए उतना इसको ऑडियंस नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इसकी पब्लिसिटी हो गई सोशल मीडिया के जरिए, फिर लोगों ने इसके पॉजिटिव रिव्यू दिए और लोगों को इतनी पसंद आई कि अब इंडिया में फिलहाल 2026 के टॉप 10 फिल्मों के अंदर तगड़ी कमाई की है, उसमें तीसरे नंबर पर ये फिल्म आ चुकी है। जी हाँ, मतलब हनुमान अंश फिलहाल टॉप 3 में है। पूरे इंडिया में अब तक इसने 222 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो इसी के साथ फर्स्ट नंबर पर है धुरंधर 2, सेकंड नंबर पर है बॉर्डर 2, और थर्ड नंबर पर आ चुकी है हनुमान अंश। क्या बात है यार, मानना तो पड़ेगा अगर कहानी बहुत प्यारी रही ना तो ऑडियंस हर एक फिल्म को उतना ही प्यार देती है। हालांकि ये फिल्म बस 2 करोड़ के बजट में बनी है, लेकिन कमाई इसने 222 करोड़ तक की है इंडिया में। कौन कहता है कि फिल्म में बस एक्शन सीन VFX इससे बनती है, भाई एकदम कहानी बेहतरीन रहे ना तो फिल्म चलती ही है। तो अगर आपने हनुमान अंश देखी है तो कैसी लगी आपको ये फिल्म बताइए जरा DM के जगह इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर। बाकी सुनते रहिए
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: उपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स। इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
0: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार

खेलो चाहे कली से प्यार करो।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM साथ है।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM,
2: साथ है तो बात है।
3: नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर,
4: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM।